0: Mirchi, it's hot.
1: Saathi re, thoda theher ja, abhi raaste ko.

रोशी थ्योरी नंबर 428 एंड चांसेस है कि इस थ्योरी को एक्चुअली बैकअप किया जा चुका है विद रिसर्च. आई डोंट नो, आई हैवंट इवन बॉदर टू चेक बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आउट ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस दैट इफ यू आर विद समबडी जो एक बहुत अच्छा किसर है, देन चांसेस हैं कि उसके बाद के जितने भी बेसिस हैं गेटिंग नॉटी इज गोइंग टू बी सुपर फन. लेकिन अगर इंसान किसर ही बुरा है तो उसके बाद आपकी किस्मत इन द रोमांस सेक्शन काफ़ी ख़राब होने वाली है. मैंने ऐसे कई रिस्क लिए अपनी ज़िंदगी में वेयर आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है बंदा ख़राब किसर है, बट आई एम श्योर ही बी अ ग्रेट लवर इवेंचुअली, बट ऐसा नहीं हुआ मुन्ना. और अगर मौसी जी आपके साथ इसका बिल्कुल विपरीत हुआ है, यू एंडेड अप विद अ बैड किसर बट फाउंड अ ग्रेट लवर, देन दुनिया के शायद आप वो 1.5% के लोग हो जिनके साथ ये अच्छी किस्मत की बातें हुई हैं. और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है देन आई वॉन्ट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी. और वो बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. एंड वाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट.

0: वैसे तो अनलाइक माई नानी एंड माई डैड, मुझे बिल्कुल गॉसिप करने में शौक नहीं है, लेकिन जब आप मुझे गॉसिपी सिचुएशंस भेजते हो, आई एम सो टेम्प्टेड टू कॉल यू एंड फाइंड आउट. सो मुझे सारा का मैसेज आया, शी सेड कि मेरे रिलेशनशिप में कोई भसर नहीं है, बट मेरी बेस्ट फ्रेंड ने जो काम किया ना भाई, इट्स लाइक वर्थ टॉकिंग अबाउट बिकॉज इट्स स्पाइस प्रो मैक्स. तो ऑब्वियो मैं टेम्प्ट हो गई और मैंने सारा को फोन किया. लेकिन अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी कोई स्पाइसी स्टोरी है टू शेयर विद मी एंड यू वांट टू बी जस्ट लाइक गॉसिपी, गो फॉर इट. दिस इज द वेदर फॉर इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RocHIE, और मेरे साथ लाइन पर सारा है. हाय सारा.
1: हाय रोशी,
0: हाउ आर यू?
1: आई एम ऑल गुड एंड आई हैव द स्पाइसी स्टोरी फॉर यू. बेसिकली कॉलेज में, आई मीन एवरीबॉडी नोज, सबको डेट कर रहे होते हैं, तब मेसी सिचुएशन होता है.
0: करेक्ट.
1: बट माय बेस्ट फ्रेंड वाज डेटिंग अ डूड फॉर 3 entire years.
0: ठीक है.
1: एंड द डूड्स बेस्ट फ्रेंड, वो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकती उसके बारे में. 3 साल का रिलेशनशिप था एंड लास्ट ईयर लाइक अपेरेंटली वो बेस्ट फ्रेंड जो मेरे दोस्त का बॉयफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड जो था, ही वाज इन लव विद द गर्लफ्रेंड, लाइक मेरी, लाइक ही वाज इन लव विद माय बेस्ट फ्रेंड.
0: ऑल 3 years. मतलब जितने 3 साल आपकी बेस्टी, मान लो आपकी बेस्टी का नाम है मिस एक्स और मिस्टर वाई जो उसका बॉयफ्रेंड है, और उनका जो बॉयफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है मिस्टर ए, मिस्टर ए हैज बीन लव इन लव विद मिस एक्स ऑल दिस वाइल.
1: All this while, 3 entire years. Imagine, मतलब अपने best friend की girlfriend से तुम प्यार करते हो and तुमने कुछ बोला नहीं. Last year of the relationship में उसने जाके बोला कि ओ भाई, I तो love your girlfriend, मेरे को नहीं पता, and caused an entire massive breakup. And the entire friend group fell apart because of this breakup. It was all drama, पूरा मतलब ऐसे लग रहा था कि कोई मूवी का प्लॉट ऐसे हमारे कॉलेज में आ गया है.
0: एक सेकेंड, तो आपकी बेस्ट फ्रेंड का एक बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड है who's in love with this girl. 3 साल के बाद वो आपके बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को बताता है कि यार तेरे गर्लफ्रेंड के साथ तो आई एम इन लव विद हर. उसके बाद क्या होता है, इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, आपकी बेस्टी का और उसके बॉयफ्रेंड का
1: ब्रेकअप हो गया. बहुत मैसी ब्रेकअप, ऑब्वियसली मतलब ये इतना मैसी सिचुएशन है, सब किसी को कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, एंड ये सब हुआ. एंड देन द गर्लफ्रेंड एंड द लाइक मिस मेरी फ्रेंड एक्स एंड मिस्टर ए बिकेम रियली क्लोज फ्रेंड्स एंड लाइक दे ऑलमोस्ट लाइक डेटिंग सॉर्ट ऑफ, व्हिच इज मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है
0: भाई. ये तो करण जौहर की पिक्चर से भी बढ़िया सीन है, क्योंकि आई कांट इवन इमेजिन. मैं करण जौहर को फोन करने वाली हूँ इस फोन कॉल के बाद, पता है ना.
1: तो बहुत ही हिट मूवी बनेगा.
0: ओ माय गॉड. सो अभी क्या सीन है, ये दोनों बहुत क्लोज हैं या फिर इतने क्लोज हैं कि इनके बीच में हवा भी पास नहीं हो सकती है?
1: मतलब इतने क्लोज है कि इनके बीच में हवा भी नहीं पास हो सकती.
0: ओ माय गॉड, दिस इज द जूसीएस्ट बिट ऑफ गॉसिप आई हैव हर्ड ऑल डे. ये आपने मुझे अपने कॉलेज की जो हॉट लव स्टोरी सुनाई है, वैसे तो मैं करती नहीं हूँ, बट दिस वन इज फॉर यू सारा.
2: यू've been roshified.
0: अपने कॉलेज से ऐसी गंदी गंदी वाहियात भसर वाली स्टोरीज प्लीज मुझे सुनाते रहना, ठीक है? बोल रही है हाँ जी. अगर आपके पास ये ऐसी कोई गॉसिपी स्टोरी है तो हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफबी. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RocHIE, याडा याडा याडा. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: सो यू आर टोटली इन लव विद योर कजिन और इसीलिए आप बार बार अपनी मासी के घर जाते रहते हो, बट किसी को ये पता चल गया ना, इतने जूते पड़ने वाले हैं ना, यू वोंट नो वेयर टू गो.
1: द सीक्रेट बॉक्स.
0: विच इज वाई अगर आपके पास कोई कन्फेशन है तो मेरे पास है उसे सुनने के लिए नॉन जजमेंटल कान मेरी जान. एंड फॉर दिस मोमेंट मेरे साथ है मेरे मिस्ट्री कॉलर. काफी दुख के सताए हुए प्राणी है ये. हेलो दुख के सताए हुए मिस्ट्री कॉलर प्राणी.
2: हाय रोशी. हाय.
0: हाय मिस्ट्री कॉलर. आपके आवाज सुन के और आपके मैसेजेस पढ़ के मुझे हाय की जगह हाय हाय कहने का मन कर रहा है.
2: मुझे भी बहुत ज्यादा, अभी रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हुआ है तो मुझे शेयर करना है आपके साथ. मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ तो सॉल्यूशन चाहिए मुझे.
0: बोलना.
2: अभी 2-3 महीने पहले मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मतलब अब वो एक्स गर्लफ्रेंड हो चुकी है क्योंकि मेरे साथ उसने चीट करा है, तो वो अपनी नानी के यहाँ पे गई हुई थी. तो वहाँ पे जो बचपन के फ्रेंड्स होते हैं तो उसके साइड में एक पड़ोसी रहता था जिसका नाम सनी था. तो उसके साथ उसने फिजिकल हुई, वो चीट करा और मुझे पता चल गया. वो उसने, मैंने सारी चैट्स पढ़ी और उसने मेरे को है ना मेरे फोन में हैंगआउट्स, गूगल हैंगआउट्स कर रखा था लॉगिन. तो मैंने वहां से सारी उसका नोटिफिकेशन आया तो मैंने खोल के देखा. तो तब मुझे पता चला उन सबके बीच में, मतलब जो कुछ हुआ है उन दोनों के बीच में. तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ तो मैं यही आपसे शेयर करना चाहता था.
0: हाउ डिड यू फील? मतलब इमेजिन करना, रैंडमली नोटिफिकेशन आ रहा है आपके फोन पे, आपको लग रहा है कि ये मेरा गूगल हैंगआउट का नोटिफिकेशन है, एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो इज लाइक योर गर्लफ्रेंड इज सेइंग आई लव यू बट नॉट टू यू बट टू सनी भाई साहब.
2: उससे पहले मुझे भी लगा था कि मुझको प्यार करते, लेकिन बाद में मुझे पता चला जब उसने चीट किया तो ये सब झूठ था.
0: तो ठीक है मिस्ट्री कॉलर.
2: हाँ मतलब थोड़ा सा.
0: डू यू थिंक इफ आई रोशिफाई यू, यू विल फील थोड़ा सा बेटर?
2: या
0: इतना क्यूट है ये, ले यार.
3: You've been roshified.
0: और रोशिफिकेशन के साथ साथ दो किसेस भी ले ले, मुफ्त मुफ्त मुफ्त. अब कैसा लग रहा है?
2: अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे.
0: ये बहुत सही है. मतलब अभी इतनी दुखियारी आवाज थी तेरी और अब कह रहा है अब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. बट आई होप दैट योर नेक्स्ट गर्लफ्रेंड एक्चुअली डज राइट बाय यू बिकॉज यू साउंड लाइक सच अ नाइस गाय. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई बहुत ही अमेजिंग हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है थैंक्स टू सोशल मीडिया, डू सीरियसली हिट मी अप ऑन सोशल मीडिया. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

बैठा जिसके भी बस की वो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: बड़ो बॉय बन जाता हूँ।
1: yeah. उड़ती है खबरें लेता ना स्ट्रेस गेम का काट ऑन टू द नेक्स्ट हो प्लेन है प्राइवेट लाइफ है ब्लेस मुट्ठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा ना मुझे ऐसे मस का लगा रही ना किसी काम धाम की जब से लड़की को चस्का लगा।

मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Suren ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: आजकल फिल्म देखने के बाद सबसे डेंजरस सवाल ये नहीं है कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, सबसे डेंजरस सवाल है कि मुझे इसे देखना क्यों चाहिए था, क्योंकि ऑडियंस बदल गई है। अब सिर्फ बड़ा स्टार काफी नहीं है, सिर्फ बड़ा बजट काफी नहीं है, सिर्फ VFX का शोर भी काफी नहीं है। कहानी में कुछ तो होना चाहिए, कुछ ऐसा जो स्क्रीन बंद होने के बाद भी दिमाग में चलता रहे। शायद इसलिए हिंदी सिनेमा के बीच का वो खाली स्पेस फिर से भर रहा है। कभी एक पुरानी याद नई आवाज बनकर लौट जाती है, कभी एक छोटी सी कहानी बड़े पर्दे को चैलेंज कर देती है, और कभी बॉलीवुड हमें रोमांस के नाम पर ऐसे ऐसे लॉयल्टी टेस्ट दे रहा है कि हम खुद सोच रहे हैं भाई थेरेपी लेनी पड़ेगी क्या। तो इस हफ्ते फिर देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या टिक रहा है, और सबसे जरूरी क्या याद रह रहा है। हाय, मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20 एंड वी किक स्टार्ट विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है गाना नंबर 20, राघव जुयाल की भाई तेरा स्टार है का ट्रैक बाय अमित त्रिवेदी। This is Rang Barse.
3: Number 20.

शायद 2026 में धुरंधर एक गहरी याद बन के रह जाए, लेकिन जब मेरी जेनरेशन थोड़ी केयरफ्री थी और जिम्मेदारियां उतनी भारी नहीं फील होती थी, तब भी एक याद थी। तीन दोस्त, एक गाड़ी और स्पेन की सड़कें, और सामने पूरी जिंदगी। 2011 में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ने हमें यही तस्वीर दी थी। अर्जुन को समंदर में उतरना था, इमरान को अपने अंदर का डर खत्म करना था, और कबीर को अपनी जिंदगी का फैसला करना था। और हम सिनेमा हॉल से निकले तो लगा कि हाँ यार, जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। फिर 15 साल निकल गए। वो तीन दोस्त तो स्क्रीन पर कहीं रुक गए, लेकिन हम नहीं रुके। हमारे भाल बदले, चेहरे बदले, दोस्तियों के बीच नए नाम आ गए। कुछ लोग शादी तक पहुंच गए, कुछ सपने रस्ते में रह गए। और शायद इसलिए अगर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सीक्वल कभी आता भी है, तो मुझे यार स्पेन की एक और रोड ट्रिप नहीं चाहिए। मुझे देखना है कि उन तीन दोस्तों के साथ जिंदगी ने क्या किया, क्योंकि पहली फिल्म में तो वो जिंदगी को ढूंढने निकले थे, लेकिन अब शायद जिंदगी उन्हें ढूंढने आ गई है। नंबर 18 पर है चटनी धमाल 4 से, पर जिस ट्रिप पर निकले हैं उसे पूरा करते हैं। वो ट्रिप जिसकी हवा आज भी चलती है, ख्वाबों के परिंदे। शायद इस बार हम स्पेन नहीं देख रहे, शायद हम खुद को पीछे मुड़कर देख रहे हैं।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 Mirchi, it's hot. Sureen ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 11.

0: माशूका, एक ऐसा गाना जो सुनते ही बॉलीवुड रोमांस की पुरानी आदत याद आ जाती है। लेकिन कुछ फिल्म्स की आदत नहीं होती, उनसे उम्मीद होती है। कुछ महीनों पहले जावेद अख्तर साहब ने बंटवारा 1947 को लेकर एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर एक्सपेक्टेशंस सीधा आसमान तक पहुंच गए थे।
1: एक प्रेडिक्शन में करना चाहता हूं, आई नो आई एम पुटिंग माय नेक आउट ऑन द ब्लॉक, मगर मैं इस सिलसिले में थोड़ा सा वेन हूं। मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव बीन राइट, इफ आई हैव नॉट लाइक द पिक्चर दैट पिक्चर इज नॉट ट्रू। मैं आपको बताता हूं, एक पिक्चर आने वाली है जो चाहे मल्टीप्लेक्स हो और चाहे ऑडियंस हो सिंगल, उसमें वो पिक्चर चलेगी और लोगों को पसंद आएगी। वो पिक्चर इस वक्त ये बना रहे हैं। मैं आई एम पुटिंग माय नेक ऑन द ब्लॉक। मुझे मालूम है कि आप लोग भूलेंगे नहीं, मगर जब मैं सही साबित हूँ तो सलाम करने आइएगा।
0: अब जरा सोचिए, आमिर खान एज प्रोड्यूसर, राजकुमार संतोषी डायरेक्टिंग अ फिल्म आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, सनी देओल, शबाना आजमी, प्रीति जिंटा एज द कास्ट, जावेद साहब के लिरिक्स और ए आर रहमान का म्यूजिक। यार ये कॉम्बिनेशन फिल्म नहीं है, ये एक इवेंट है। और फिर वो फिल्म आती है और उसका म्यूजिक भी आता है और एक अजीब सी चीज होती है, कुछ भी पीछा नहीं करता। ना वो एक मुखड़ा जो दिमाग में अटक जाए, ना वो एक लाइन जो आप किसी दोस्त को भेजें, ना वो एक गाना जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके साथ घर आए। और मुझे इसलिए हैरानी नहीं है कि बंटवारा 1947 का कोई गाना एक सुपरहिट गाना नहीं बना, या शायद मिर्ची टॉप 20 पर नहीं आया। मुझे हैरानी है कि एआर रहमान और जावेद अख्तर की फिल्मोग्राफी से निकला हुआ एक भी गाना अभी तक मेरी यादों में जगह नहीं बना पाया। हो सकता है कि वक्त बदले, हो सकता है दैट दिस एल्बम ग्रोज ऑन मी, हो सकता है कि कोई गाना धीरे धीरे अपना रास्ता बना ले। लेकिन तब तक मैं उस एक गाने का इंतजार कर रहा हूं, आई एम वेटिंग। और जब बात आमिर खान और एआर रहमान की हो, तो एक वक्त था जब दोनों ने ऐसे गाने दिए थे जो आज भी बिना किसी इंट्रोडक्शन के दिल में उतर जाते हैं। माय रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रैक्स एवर, तू बिन बताए, रंग दे बसंती से।
2: टॉप 20 रीवाइंड।

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 4.

16 साल से रिलेशनशिप में हो, साथ रहते हो, खुश हो, शादी की जरूरत भी महसूस नहीं होती। एंड फिर बॉलीवुड कहता है एक काम करते हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने ही बॉयफ्रेंड को पटाने के लिए कन्विंस करते हैं, लॉयल्टी टेस्ट करवाते हैं। वेलकम टू कॉकटेल 2 विथ रश्मिका मंदाना एज दिया, कृति सैनन एज एली एंड शाहिद कपूर एज कुणाल। एंड ऑनेस्टली दिया, 2026 है, थेरेपी नाम की भी एक चीज होती है। लेकिन कॉकटेल 2 का प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है कि इसकी असली लव स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड को कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक के बीच का फर्क आता ही नहीं है। They forgotten about it. Jealousy को पैशन बना दिया है, possessiveness को प्यार, stalking को persistence और manipulation को relationship test. कभी कभी cheating को भी true love कह दिया जाता है। और हम देखते रहते हैं क्योंकि स्क्रीन पर दो खूबसूरत लोग अगर खड़े हो, बैकग्राउंड में एक बड़ा सा रोमांटिक गाना बज रहा हो, तो हम हर रेड फ्लैग को गुलाबी चश्मों से देखते हैं। शायद रोमांस का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको कंफ्यूज करता रहे, रोमांस शायद वही है जहां आपको टेस्ट देने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर 16 साल बाद भी अपने पार्टनर की लॉयल्टी चेक करने के लिए किसी तीसरे इंसान की जरूरत पड़ रही है, तो प्रॉब्लम लव ट्रायंगल में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है और आपके रिलेशनशिप में। And that is what Cocktail 2 tried to explore when I watched it on OTT. यार बॉलीवुड को भी शायद अब ये समझ लेना चाहिए that audience रोम कॉम्स चाहती है, टॉक्स कॉम्स नहीं। We don't want toxic love. But from toxic love, I want to play sweet innocent love. बर्फी नाम की फिल्म, उसका एक गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में, आशिया। It's my special request of the week.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3.

0: कुछ आवाजें चार्ट्स पर नहीं आती हैं, चार्ट्स को अपना घर बना लेती हैं। एंड गहरा हुआ ने इतने हफ्तों से कुछ ऐसा ही किया, लेकिन आज बहुत वक्त बाद उसकी जगह कोई और आ गया है। गाना बेशक अलग है लेकिन आवाज वही है, अरिजीत सिंह। लेकिन इस बार वो एक नए गाने के साथ नहीं, एक पुरानी याद के साथ लौटे हैं। आवारापन, एक फिल्म जो 2007 में आई थी, जिसके गाने हमने MP3 प्लेयर्स में भरे, आईपॉड्स में संभाले, फोन बदलते रहे, लेकिन गाने नहीं बदले। तो फिर आओ, तेरा मेरा रिश्ता, और इतने सालों बाद सवाल यही था, आवारापन का दर्द दोबारा कैसे लिखोगे यार? अमाल मलिक के सामने मुश्किल गाना बनाना नहीं था, मुश्किल था एक याद बनाना, और उस याद के लिए अमाल को एक आवाज चाहिए थी।
1: आप इनिशियली अरिजीत के फर्स्ट 3-4-5 इयर्स में आप हो सकता था कि आप कोई भी गाना दे दो अरिजीत के नाम से चल जाए, अब वैसा नहीं होता है और किसी के साथ भी नहीं होता है। गेट द बिगेस्ट सिंगर ऑफ द कंट्री ऑल्सो, अरिजीत सिंह ले लो, आप सोनू निगम ले लो, अगर गाने में बात नहीं है तो आप इतना ही विंडो तक उसको संभाल के बचा के प्रमोट करके यू कैन सेव इट। बट इफ इट इज गोइंग टू बी हर्ड एंड लव्ड एंड ऑल, तो सिंगर का भी हार्ट होना चाहिए, कंपोजर का भी हार्ट होना चाहिए, लिरिक्स राइटर सबका एक साथ में वो एनर्जी से गाना बनता है। सो व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग, इट वाज नथिंग कि उसने कोई पहले प्रॉमिस किया या हम लोग की कोई डील थी, यू नो पीपल ऑलवेज थिंक कि अच्छा कोई पुराना रिकॉर्डेड गाना अब रिलीज हो गया। सो सिंस अ ईयर इट इज बीन इन माई वॉइस, समवन comes once in an era and becomes an Arijit Singh. Not everyone has the skill set also. Not everyone has the blessing of God also. And not everyone has the heart also like him to step away in the prime. Yani he himself also used to tell, is gaane ke liye bhi usne mere liye ladai ki hai. Usne bola hai sabko, are Amal ne itna achha gaya hai, mujhe kyun gawa rahe. To maine bola, aisa mujhe chahiye. Aisa in log kisi ki bhi nahi hai. Aisa meri requirement hai that you at least see if you like the song, pura ban gaya, check it out. So it was just about 3-4 months before Abhi that song came that he started recording and revisited the song 2-3 times.
0: और आज गहरा हुआ को पीछे छोड़कर वही आवाज फिर से नंबर वन बन गई है। This is ये आवारापन, the new undisputed number one song on the Mirchi Top 20.

0: ये आवारापन मिर्ची टॉप 20 को एक नई जगह पहुंचा दिया इसने, और शायद इसलिए गाने इतने कमाल के होते हैं। कुछ सिर्फ चार्ट्स पर ऊपर जाते हैं और कुछ सीधा दिल और दिमाग में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। वेल दिस एपिसोड इज डन, लेकिन मैं वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम टू सेट द पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां आपके लिए हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन लेकर आते हैं। इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है। वी गोइंग टू हैव सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर, तो स्टे कनेक्टेड विद अस थ्रू आउट द काउंटडाउन। सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी। पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर बरकरार मूव बॉडीज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद शान एंड दीदार कौर की आवाज में उदिपन शर्मा का म्यूजिक, श्लोक लाल के लिरिक्स, गाने का नाम है दिलदारा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: ऐसा क्या है ना शान की आवाज में कि उनके गाने को जब हम सुनते हैं वी कैन इमेजिन हिम स्माइलिंग, कि ये गाना गाते हुए कैसे स्माइल कर रहे होंगे। मैं उनके बारे में बात करते हुए भी स्माइल करने लग जाती हूँ दीदार कौर एंड शान की आवाज में। दैट वॉज दिलदारा दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो मुझे। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव जो गाना हमें पसंद आने वाला होता है ना, वो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है। कब कैसे सुनना है, हम कौन सा अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं कि आज मैं वो गाना जाके सुनूंगी और मुझे वो गाना अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं होता है। वी जस्ट स्टंबल अपॉन दैट सॉन्ग। मे बी मैंने रेडियो पे चलाया हो, आपने सुन लिया हो, आप किसी कैफे में है और वहां वो गाना सुना हो। इनफैक्ट मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि पहले वो जो रियलिटी शोज आते थे ना टीवी पे, कोई कंटेस्टेंट जो गाने गा रहे थे लाइव परफॉर्मेंस, उनके थ्रू आई यूज्ड टू लव दोस सॉन्ग्स। एंड देन रिसेंटली इट्स ऑल अबाउट ओटीटी शोज फॉर मी। आई रिमेम्बर मैंने नेटफ्लिक्स की एक ओटीटी सीरीज पे सबसे पहली बार प्रतीक कुहाड़ का तूने कहा मैंने सुन लिया सुना था, एंड आई लव द सॉन्ग। बंदिश बैंडिट्स के कितने सारे गाने हैं जो मैं बहुत पसंद है। देन लास्ट ईयर मिस मैश का, इट्स इनक्रेडिबल दैट हमें अब ओरिजिनल म्यूजिक मिल रहा है फ्रॉम ओटीटी शोज। इश्क है फ्रॉम मिस मैश इज वन फॉर द हिस्ट्री बुक्स। ये गाने इतने बड़े हुए, लोगों को इतने पसंद आए कि इनकी अपनी अलग पहचान बन गई। और काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, इट्स ऑल्सो फ्रॉम अ ओटीटी शो एंड इट्स अ नई नवेली एंट्री ऑन अ काउंटडाउन। मुसाफिर कैफे का गाना है। आई नो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि क्यूट सिंपल सी लव स्टोरी है। मैं अभी तक नहीं देख पाई हूँ, अगले वीकेंड का प्लान है मैं देखूंगी। दो लोग पहाड़ों में छोटा सा कैफे, सबका यही ड्रीम है। एंड जो गाना डेब्यू कर रहा है इस हफ्ते, उसका नाम है काफी है ना। ये गाना उस सिंपल सी लव स्टोरी की सिंपलिसिटी को डिफाइन कर देता है। दैट अल्टीमेटली जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं, या हाउ डू वी वांट टू फील लव्ड, कि किसी के लिए हमारी प्रेजेंस बस इनफ है, दैट काफी है ना। अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। प्रियांश श्रीवास्तव एंड जुनिंदा गांधी की आवाज में है गर्वित प्रियांश, शाउट आउट टू बोथ ऑफ देम, उनकी कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है काफी है ना। आई नई नवेली एंट्री ऑन द काउंटडाउन फ्रॉम मुसाफिर कैफे। इट डेब्यू सीधा ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 8।

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: जब फरक ने कहा हमारा ठोकरों से खास नाता है, the entire generation felt it together. फरक की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, दिस सॉन्ग तारे इज माई फेवरेट फ्रॉम द काउंटडाउन. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले हमने सुना संजू राठौड़ का बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi
0: पर, this is the Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है RJ Kanega. Connect with me Instagram पर जाओ, follow करो, handle is @RJKanega. Follow करना बिल्कुल free है. गाने suggest करती हूँ, बातें बताती हूँ, कोई आपको बातें share करनी हो बिंदास आके hit me up. It's time to put a special spotlight on a song जो अभी top 10 गानों में entry नहीं मारा है, पर जिस तरह से जनता इस गाने को प्यार दे रही है, definitely it will make it to the countdown. आज के spotlight का गाना is by one of the most promising artists of this countdown of industry today. I am talking about Banjare. उनका नया नवेला गाना आया है बरसात. The song captures that feeling कि जब आपका breakup हो गया या किसी ने आपको छोड़ दिया है, that hurts obviously. But पता है उससे भी ज़्यादा बुरा क्या लगता है? When we realize कि कोई हमसे आगे बढ़ चुका है, वो move on कर चुका है. ये गाना exactly वहीं पर है. But before we talk about the song and we listen to the song, let's talk about Banjare, jinka gana Baron mera aur aapka dono ka favorite hai.
2: Mann saam saam rakhe tere jhanjra ke jode.
0: Ye pura gana aage countdown mein feature hone wala hai, but let's talk about these artists. It's a brother duo called Sumit and Anuj jo Kurukshetra jile se aate hain, jinhone Haryanvi music ke towards sabki soch badal di. Rich songwriting, very folk storytelling ka unka andaaz hai, and gaano ko itna holistic banate hain that you are drawn towards the emotion jo wo express karna chahte hain. एंड सेम वही बात बरसात. इट गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ ग्रीफ जो एक बंदी फील कर रही है, जिसका गम खालीपन इस गाने में आपको जोर जोर से सुनाई देगा. द सॉन्ग गोज थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. पहले तो वो मानती ही नहीं है, दैट इज डिनायल. फिर वो टूट जाती है, दैट्स पेन. फिर उसी गाने के दौरान वो ये बात समझती है कि जो छोड़ के चला गया वो मुड़के नहीं देखने वाला, दैट इज एक्सेप्टेंस. एंड देन उसके बाद शी डिस्कवर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग, जहां वो खुद के सुकून को प्रायोरिटाइज करती है. वो ये बात चुनती है कि अब इस फीलिंग को पकड़ के तो नहीं बैठ सकते, दैट इज लेटिंग गो. एंड वी ऑल हैव फेल्ट दीज इमोशंस कभी ना कभी किसी के टूवर्ड्स किसी स्टेज पर. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बंजारे आर बैक एट इट अगेन. उनका नया नवेला गाना कॉल्ड बरसात, रीचिंग फॉर अ हार्ट, इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन आवर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट. बंदी का नाम है RJ Kanega. एंजॉय.

0: कितने मेरी।
1: God damn, आप हरियाणवी नहीं समझते, मैं नहीं समझती हूँ, बट वो फीलिंग ऑफ लेटिंग गो वो पूरी अच्छी तरीके से इस गाने में समझ में आती है। गाने का नाम है बरसात बाय द वन एंड ओनली बंजारे ऑन आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट दिस वीक। बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम मुसाफिर कैफे। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार रेखा भारद्वाज जी एंड राघव कौशिक की आवाज में, राघव कौशिक का ही म्यूजिक। गाने का नाम है दरमिया, दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
2: Number 5.

इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची नंबर 4

0: cannot not groove to this song. Anish Sarkar, Hruday Ka Gaana, Gaane Ka Naam Hai, Udi Udi, 11 Haftos Se Is Countdown Par Barkarar, this week on Gaana Number 4.
1: Gaana Indie Top 10. Gaane Ka Ke Saath. On Mirchi.
0: Mirchi par, this is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, follow karo. Mera handle is at RJ Kanika. The show is all about the hottest pop music of the week. And sometimes, jo gaane hamein achhe lagne hote hain na, hum unhe dhoondne nahi nikle hote hain. Wo bas hamare raaste aa jaate hain. Aise hi maine pichle hafte ek gaana suna called Baavre. It's one of those songs जिसको सुनते ही मैंने अपने चार दोस्तों को बोला कि यार ये गाना सुन, बहुत अच्छा लगेगा. तो आई एम गोइंग टू प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू, व्हिच इज बेसिकली अबाउट वन साइडेड लव. एंड इतने पोएटिक वे में इन्होंने वन साइडेड लव के बारे में बात करी है. यू नो, वो चांद है, चांद के आसपास एक रोशनी है जो ना उस चांद को छू पाती है ना उसे छोड़ के जा पाती है, बस वो है. उस रोशनी के जरिए यहाँ पर वन साइडेड लव के बारे में बात हुई है. ऑनेस्टली गानों में अच्छा साउंड करता है, आई होप किसी को कभी ना हो. बट प्लॉट ट्विस्ट ये है दैट इस गाने में फीलिंग गहरी है, सोच बहुत गहरी है, बट गाना बिल्कुल भारी नहीं है. इट्स अ ब्रीजी पॉप सॉन्ग, बहुत मेलोडिक रैप है. विकेट सनी ने इसे ऐसे लिखा है कि दर्द छुपता नहीं है पर गाने की फीलिंग आप पर बोझ की तरह भी नहीं आती है. इट्स लाइक अ फील गुड कंपेनियन एंड यू आर एंजॉयिंग इट थोरली एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सॉन्ग. तो अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. गाने का नाम है बावरे बाय ऋषि रॉय एंड विकेट सनी स्टारिंग कशिश रत्नानी. इट्स प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: कह दूं

That was a song called Bavare by Wicked Sunny and Rishi Roy. One of those songs, मुझे पता है अब आप सुन के दो दोस्त को recommend करोगे कि इसको जरूर सुनना. At RJ Kanek on Instagram पर आओ, ऐसे कोई गाने हैं you want me to play next week, हमसे आके share करो. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. 21 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. गाने का नाम है शीशा, मिटर और की composition, उन्हीं की आवाज, also featuring स्वरा वर्मा. पिछले हफ्ते से एक position नीचे drop होके शीशा is playing right next for you on Gaana. Number 3. You're listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy. Number 3.

0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। हफ्ते के टॉप 10 पॉप गाने हम आपके लिए लाते हैं। कनेक्ट विद मी, मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पर @RJKanika। कोई गाना बताना हो, कोई सजेशंस हो, बिंदास आके हिट मी। आप कोई सवाल है, बिल्कुल वी वेलकम इट @RJKanika पर बताओ। मैं और मेरे प्रोड्यूसर अशकाय, वी टेक योर सजेशंस, रिकमेंडेशंस वेरी वेरी सीरियसली। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज And the song we are going to feature this week is
2: Teri Deewani
1: गाने का नाम है तेरी दीवानी, कैलाश खेर की आवाज में बाय हिज बैंड कॉल्ड कैलासा। साल था 2000 एंड कैलाश खेर की आवाज वाज द मोस्ट बुलंद आवाज ऑफ दैट ईयर। अब इतनी पुरानी बात लगती है दैट आई वांट टू रियली पिक माय ब्रेन एंड थिंक दैट मैंने क्या सोचा था जब मैंने सबसे पहली बार कैलाश खेर की आवाज सुनी थी, बिकॉज इट साउंड सो अर्दी रॉ, कुछ कच्ची मिट्टी से जुड़ी हुई आवाज है उनकी। एंड दिस सॉन्ग वॉज एवरीवेयर। इस गाने की ब्यूटी मुझे ये लगती है दैट हर किसी के लिए तेरी दीवानी गाने का मतलब अलग है। किसी के लिए इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग, इश्क वाला, प्यार मोहब्बत वाला, दैट आई एम ऑल अबाउट यू बेब, पर किसी के लिए ये गाना एक इबादत के जैसे है, अ डिवोशनल सॉन्ग। देन देयर आर आल्सो पीपल जिनके लिए एक सूफी गाने की तरह है, जहां प्यार और बंदगी में कोई फासला नहीं होता, जहां आप किसी इंसान को इतना चाहते हो दैट वो उस इंसान की ही इबादत करने लगते हो। यू माइट नॉट अग्री विद किसी और का वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ आर्ट ना, टू ईच देयर ओन। एंड तेरी दीवानगी बाय कैलासा एग्जैक्टली वही गाना है। ये किसी एक बॉक्स में फिट ही नहीं हो सकता है। ये आप अपने दिल टूटने पर भी सुन सकते हो और किसी दिन सुकून ढूंढने के लिए भी। शादी में एक रोमांटिक गाने की तरह भी चल सकता है एंड अकेले कमरे में आंखें बंद करके भी ये गाना अच्छा लगता है। बट व्हाट्स कॉमन अमंग्स्ट ऑल दीज थिंग्स इज इस गाने की कॉम्पोजिशन, कैलाश खेर की आवाज एंड व्हाट इट मेक्स यू फील। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, कैलाश खेर की आवाज में कैलासा द बैंड का गाना दिस इज तेरी दीवानी ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

0: डूड, कैलाश खेर की आवाज में जो दर्द है इन तेरी दीवानी, वो दर्द सीधा कलेजे पे लगता है, दिल नहीं कलेजा। दैट वॉज तेरी दीवानी ऑन आवर कैसेट क्लासिक दिस वीक एट आरजे कनक ऑन इंस्टाग्राम पर। आओ 90s 2000s के वो गाने जो आज भी आपको बहुत ज्यादा पसंद है हमसे आके शेयर करो। मैं और अशका आपके सारे गाने सारे रिकमेंडेशन को ध्यान से देखते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, इट्स टाइम फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक। इस हफ्ते के काउंटडाउन में गाना नंबर 2 पर इज हर्ष नुस्सी का गाना साडी सुन। पिछले हफ्ते से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, आई स्वेयर आई एम नॉट इवन किडिंग, पांच भी नहीं, ये गाना पिछले हफ्ते से पूरे 7 पोजीशंस ऊपर उठ के दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2। उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज येट अगेन बैरन। बंजारे थे आर्टिस्ट का गाना 21 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैरन इज ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक, हर्ष नुस्सी का साडी सुन ऑन नंबर 2, बंजारे का बैरन ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
1: हो चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे, को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे।

Mirchi. It's hot.

आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, चाहे जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी। रेडियो मिर्ची, रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची, मिर्ची, मिर्ची, इट्स हॉट।

मिर्ची, इट्स हॉट। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पे कॉफी तो स्ट्रांग है ही, म्यूजिक उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है और एनर्जी स्ट्रांग गेस्ट है। अभी फिलहाल तुम ऑफिस के लिए निकल रहे हो, किड्स को स्कूल भेज रहे हो या ट्रैफिक में फंसे पड़े हो या ये सोच रहे हो यार इंडिया में तो अभी शाम होने वाली होगी। बस आज का मॉर्निंग डोज ऑफ मैडनेस एंड मिर्ची स्टार्ट्स हियर। हम बात करने वाले अगले कुछ घंटों में थोड़ी सी बॉलीवुड की, थोड़ी देश और दुनिया की, थोड़ी सी इंटरनेशनल बातें, थोड़ी सी अपनी जिंदगी की और थोड़ी सी बीच बीच में रैंडम बातें भी करने वाले, लेकिन साथ में होने वाला है मिर्चीदार बैंगर म्यूजिक एंड ऑफ कोर्स योर्स ट्रूली, बोले तो मैं यानी कि प्रिसिला। सो अभी वॉल्यूम अप, चाय या कॉफी रेडी रखो, मिर्ची मॉर्निंग्स ऑफिशियली शुरू हो चुका है। तुम्हारी प्लेलिस्ट तैयार कर ली है मैंने और थोड़ी सी देर में एक कॉन्टेस्ट के बारे में भी बात करने वाली हूँ। मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि तुम कैसे जीत सकते हो कुछ अमेजिंग अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स। फटाफट से मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647224। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात और सी।
1: अरे 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन से गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: अच्छा बाबा मान गई, बस कर अब।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड लेट्स रिवाइंड द क्लॉक एंड फाइंड आउट कि आज के दिन पहले के सालों में क्या क्या हुआ था। 1914 में न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर द सन स्टार्टेड पब्लिशिंग द फेमस ग्रेट मून होक्स, एक फिक्शनल स्टोरी क्लेमिंग देयर वाज लाइफ ऑन द मून। 1916 में प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन साइंड द एक्ट दैट क्रिएटेड द नेशनल पार्क सर्विसेज, अमेरिका के ब्यूटीफुल नेशनल पार्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। 1944 में पेरिस वाज लिबरेटेड फ्रॉम 4 years ऑफ जर्मन ऑक्यूपेशन बाय एलाइड फोर्सेस एंड द फ्रेंच रेजिस्टेंस, अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड वॉर टू। And 2012 May, NASA's Voyager 1 entered interstellar space, becoming the first human-made object to do so. And before you head out, Mirchi Karega Bandhan Pura is contest mein participate karo. Raksha Bandhan ka celebration aur bhi meetha bana raha hai Nanak Foods, bringing sweetness to your life. This contest is brought to you by Nanak Foods. Register karne ke liye Rakhi type karke WhatsApp par bhejo, abhi ki abhi number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647 2 4. And साथ में भेजना अपना पूरा नाम एंड वेट फॉर आवर कॉल। Also you can DM me at Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS on Instagram and X, and this is in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road, जहाँ पर festive special offers चल रहे on 22 carat gold and diamond jewelry, not to be missed. Visit ViraniJewelers.com. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, this is Mirchi Mornings. Coming up, Mirchi the bangers only for you. Stay tuned and stay hot.

0: मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड आप सुनने वाले काफी इंपॉर्टेंट अपडेट।
1: गुड मॉर्निंग रेडियो मिर्ची लिसनर्स, दिस इज जेसन दोशी फ्रॉम एसडी कैपिटल फंडिंग विद टुडेज एसडीसीएफ Mortgage market update. Treasury Secretary Bessent has been a lot in the news lately. Last week, he announced a bond buying program, which he hoped would lower mortgage rates, but unfortunately didn't. Now, he's set to announce economic sanctions on Iran, and we're keeping a close eye on this news. But listen, folks, don't get too caught up in trying to predict every rate movement. If the home and payment make sense today, you can always look at refinancing later if rates improve. And even ask us about our introductory rates, which are up to 1% below the current market rate. Call me today at 732-429-4050 and ask about these introductory promotional rates. Again, call me directly at 732-429-4050 or visit us at sdcapitalfunding.com. This is Jason Doshi with your SDCF Mortgage Market Update. Welcome home.
0: मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिव मॉर्गेज अपडेट, मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची ब्रिज, दैट इज MIRCHIBRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ऑन।

गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। चलो अब चेक करते हैं आज का वेदर का हाल चाल क्या है, बिकॉज यार हम देसीज के लिए वेदर फोकस का मतलब है कि आज पहन कर क्या जाना है। Right now we are at 61 degrees Fahrenheit. It's sunny and it feels a little bit warmer around 64 degrees Fahrenheit. So Mother Nature aaj keh rahi hai temperature kuch aur hai, vibe kuch aur hai. Afternoon mein around noon partly cloudy sky is expected hai. Overall today's temperature will range from 59 degrees to 80 degrees Fahrenheit with the feels like range around 60 to 81 degrees Fahrenheit. और हाँ, कल के कंपैरिजन में प्रीटी मच द सेम स्टोरी। यस्टरडे वाज 60 टू 80 डिग्रीज फारेनहाइट और आज है 59 टू 80 डिग्रीज फारेनहाइट। सो वेदर डिपार्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है, प्रीटी मच लाइक सरकारी दफ्तर। गुड न्यूज दो ये है कि आज अगर तुम बाहर जाने का प्लान कर रहे हो, बड़ा ही इलैबोरेट हेयर स्टाइल बनाने का प्लान कर रहे हो, तो जैसे लास्ट 24 आवर्स में 0 मिलीमीटर्स का प्रेसिपिटेशन था, अगले 24 आवर्स में भी 0 मिलीमीटर्स का प्रेसिपिटेशन एक्सपेक्टेड है। यानी कि अम्ब्रेला को आज इमोशनल सपोर्ट के लिए घर में ही छोड़ कर जाया जा सकता है। एंड रिमेम्बर, फील्स लाइक टेम्परेचर इज अ लिटिल बिट डिफरेंट लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर, तो बाहर निकलते टाइम लेयर के प्लेयर बनकर जाना जरूरी है। साथ में अपना वाटर कैरी करो, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड वेयर योर एसपीएफ 50++++, बिकॉज सन प्रोटेक्शन भी जरूरी है। और उस सन से अब इस सन के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। सन बोले तो तुम्हारे मम्मी पापा का सन, यानी कि तुम्हारा भाई, जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने का वादा करता है रक्षाबंधन पर, और रक्षाबंधन इज राइट अराउंड द कॉर्नर। और इसलिए कॉन्टेस्ट चल रहा है मिर्ची पर, जिसका नाम है नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट, जिसमें तुम जीत सकते हो नानक फूड्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ। बस करना तुम्हें ये है कि व्हाट्सएप करना है राखी RAKHI और उसे भेज देना है 9033 मिर्ची पर, यानी कि 9033647244 पर, एंड अपना पूरा नाम साथ में लिखकर भेजना। या फिर तुम मुझे DM भी कर सकते हो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पर राखी के साथ साथ अपना पूरा नाम और फोन नंबर भी लिखकर भेजना। कॉन्टेस्ट इज इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओकट्री रोड, जहां पर फेस्टिवल स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर। ऑनलाइन विजिट करने के लिए वीरानीज्वेलर्स.com पर जाकर विजिट करो और ये अमेजिंग अमेजिंग ऑफर्स बिल्कुल मिस मत करो। और अभी मिस मत करना, मिर्चीदार बैंगर्स आने वाले हैं ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और अब अराउंड द वर्ल्ड के अपडेट्स जानने का टाइम आ चुका है ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले यूएस वाइस प्रेसिडेंट जे डी वैंस ने मेन में एक पॉलिटिकल इवेंट के दौरान कनाडा को स्टेट कह दिया, फिर इमीडिएटली खुद को करेक्ट भी किया और करेक्ट करते हुए कहा सॉरी फ्रूडियन स्लिप, एंड फिर ऐड किया दैट वाज एक्चुअली एन एक्सीडेंट। नाउ इट वाज अ प्लान्ड जॉइंट एम्फिबियस लैंडिंग एक्सरसाइज बिटवीन द यूएस एंड साउथ कोरिया हैज बीन कैंसल्ड विद सोल्स मरीन कोर साइटिंग कंस्ट्रेंट्स ऑन यूएस फोर्सेस लिंक्ड टू द ईरान war. The allies are reportedly discussing whether the drills can resume. And lastly, Bloomberg reports Apple is planning a new Mac Mini, potentially ahead of its September event. The company has reportedly tested versions with M5 and M6 chips, though it's not clear which one will make the final cut. Mac Mini is releasing after almost 2 years. एंड मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस वॉज मिर्ची आवर का 3। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

अपने बॉयफ्रेंड की कार को अराउंड 3,400 लिपस्टिक के स्मैक से कवर कर दिया। अब नॉर्मली इतने सारे केसेस रोमांटिक लग सकते हैं, लेकिन इंडियन पुलिस की नजरों में ये रोमांस नहीं बल्कि रोड सेफ्टी का वायलेशन था। अपेरेंटली वीडियो में बॉयफ्रेंड कार ड्राइव करते हुए डेंजरस स्टंट्स करते हुए दिखाई दे रहा है और पुलिस ने उसे बुलाया, काउंसलिंग की उसकी एंड देन इशू किया एक 5,500 रुपीज का चालान। और प्लॉट ट्विस्ट ये है कि पुलिस के अकॉर्डिंग बॉयफ्रेंड ने अपनी मिस्टेक रियलाइज भी की है और पर्सनली कार से सारे लिपस्टिक मार्क्स भी हटा दिए हैं। मतलब कि इंडिया में रिलेशनशिप स्टेटस इज कॉम्प्लिकेटेड फॉरएवर। सो लेसन ऑफ द डे है, प्यार करो, पीडीए करो, लिपस्टिक भी लगाओ, लेकिन ये सब इंडिया में नहीं कर सकते हैं, स्पेशली कार के ऊपर, क्योंकि इंडिया में सेफ्टी फर्स्ट, रोमांस लेटर है। एंड स्पीकिंग ऑफ समथिंग रोमांटिक, डायमंड से रोमांटिक क्या हो सकता है? तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स जो कि फिलहाल चल रहा है, जहां पर तुम्हें 25% ऑफ मिल रहा है डायमंड की वैल्यू पर और मेकिंग चार्जेस पर। साथ साथ में पता है पुराना गोल्ड अगर वहां पर लेकर जाओगे जो कि 18 कैरेट से अबव है तो वो एक्सचेंज कराने पर तुम्हें 0% डिडक्शन भी मिलने वाला है। अमेजिंग ऑफर है, फेस्टिवल का टाइम भी चल रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है और अभी किसेस तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए मिर्ची दार बैंगर्स प्ले कर सकती हूँ राइट हियर राइट नाउ और मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड इट्स टाइम फॉर योर मिर्ची मॉर्निंग्स बर्थडे क्लब अनाउंसमेंट। ये आज के बर्थडे बेबी, जरा अटेंडेंस तो लगाओ यार, बिकॉज आज तुम्हारा बर्थडे स्क्वाड काफी स्टार स्टडेड है, सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे जस्ट लाइक यू आर ब्लेक लाइवली, द गॉसिप गर्ल स्टार, फिल्म मेकर टिम बर्टन, द मैन बिहाइंड बीटलजूस, रॉक लेजेंड एल्विस कोस्टेलो, एंड कंट्री सिंगर बिली रे साइरस, जो की माइली साइरस के पप्पा जी है, किस फ्रंटमैन जीन सिमन्स एंड एक्ट्रेस रेचल बिल्सन। और एक्टर्स के बर्थडे गैंग में और भी लोग शामिल हैं, क्लोडिया शिफर हु इज अ सुपर मॉडल एक्स्ट्राऑर्डिनेयर, अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड नोन फॉर ट्रू ब्लड एंड बिग लिटिल लाइज, एंड एक्टर ब्लेयर अंडरवुड, एंड वी ऑल्सो रिमेम्बर द ट्रू स्क्रीन लेजेंड टुडे, शॉन कॉनरी द लेजेंडरी जेम्स बॉन्ड, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी हुई मार्क टुडे। एंड अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे, रिमेम्बर यार केक की कैलोरीज तो आज काउंट करती नहीं है, बर्थडे है बॉस, साइंस भी छुट्टी पर चला जाता है, तो धूम मचाओ बर्थडे पर, खाओ पियो ऐश करो, और अपने शाउटआउट्स मुझे भेज सकते हो तुम राइट नाउ, अपने लिए, किसी फ्रेंड के लिए। एंड व्हाइल यू डू दैट, लेट मी रिमाइंड यू, नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा, एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, रक्षाबंधन स्पेशल कॉन्टेस्ट है, जहां पर तुम फैबुलस गिफ्ट हैम्पर्स जीत सकते हो कर्सी नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ, यम। सिंपल सा काम करना है, राखी टाइप करके व्हाट्सएप करना है 9033647244 पर राइट नाउ, along with your full name, and register karo and then wait for my call, and you can also DM me, Mirchi Pris is my handle name on Instagram, that is MIRCHIPRIS, and this contest is in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road, with festive special offers going on there, 22 carat gold and diamond jewelry par. Online visit karna hai to viranijewelers.com is the site. Main ho Prisala tumhare saath mein. Wishing all the birthday stars a very very happy birthday, and aane wale hai marchidar bangers just for you. Stay tuned and stay hot.

0: दिस इज प्रिसिला विद यू सुमृति मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो गोल्ड कार लेटेस्ट रेट अपडेट।
1: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,390 $4,390 पर ट्राई औंस गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। सिल्वर ऑल्सो ट्रेंडिंग हायर एट $65 पर ट्राई औंस आज सिल्वर ट्रेड कर रही है। हालांकि गोल्ड $5,600 एंड सिल्वर $120 पर ट्राई औंस की पीक टच कर चुके हैं और इस समय करेक्शन के साथ गोल्ड $4,390 एंड सिल्वर $65 पर ट्राई औंस ट्रेड कर रहे हैं। दिवाली पुष्य नक्षत्र इससे पहले गोल्ड वापस अपवर्ड एग्रेसिव ट्रेंड ले आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें rajjewels.com पे जहां पे 0% इंटरेस्ट पे जीरो फाइनेंसिंग जीरो डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे सकते हैं rajjewels.com की टीम को। कैसे आइए लाइफ के प्रेशियस पल सेलिब्रेट करें एट rajjewels.com। थैंक यू
0: एंड देयर यू हैव इट लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में एंड वेलकम टू मिर्ची आवर का 3। यहाँ पर तुम्हें खबरें मिलती हैं अराउंड द वर्ल्ड से। सबसे पहले, द यूएस हैज सैंक्शनड 4 इंडियन कंपनीज ओवर अलेज्ड इंपोर्ट्स ऑफ इरानियन ओरिजिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अंडर ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। द कंपनीज नेम्ड आर पोर्टीज पार्टनर्स सदाशिवा ओवरसीज, पीपी सॉफ्टटेक एंड प्राकृतिज इंफ्रा इम्पेक्स। द ब्रॉडर गोल हियर इज रिस्ट्रिक्टिंग पोटेंशियल रेवेन्यू सोर्सेज फॉर ईरान। नंबर 2 पर, यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान कुड क्रिएट चैलेंजेस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग बासमती राइस, टी एंड फार्मास्यूटिकल। India shipped around $383 million worth of rice to Iran in the first half of 2026, while tea exports were around $14 million. Sanctions could make payments, shipping and financial channels more complicated for Indian exporters. And lastly, New Zealand ke Prime Minister Christopher Luxon says the government will introduce a bill to restrict social media access for children under 16. Platforms could be required to verify ages and companies that don't comply could face major fines. And that's it for Mirchi Hour ka 3. Mujhse connect karo Insta aur X par, mera handle hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi, that's 9033647244. Aane wale hai Mirchi Dar bangers, stay tuned and stay hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: वेलकम बैक टू राशिज ओन पार्ट 2। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी तुला राशि, आज मूड हार्मोनियस और चेयरफुल रह सकता है। गुड न्यूज भी मिल सकती है आज के दिन, बस अपने प्राइवेट थॉट्स को पहले क्वाइटली सॉर्ट करो, फिर दुनिया को अपडेट देना। हर थॉट को इंस्टाग्राम स्टोरी बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। लकी कलर फॉर यू इज बेबी ब्लू, लकी नंबर इज 11। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और दूसरों के ड्रामे से दूर रहो। ग्रुप प्लान्स में मोमेंटम वापस आएगा, स्पेशली जब तुम्हारा मैसेज क्रिस्टल क्लियर हो। ड्रामा नेटफ्लिक्स पर अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 27। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और कॉन्वर्सेशन शेड्यूल करने का परफेक्ट टाइम है। प्रोफेशनल गोल्स तब इजियर होंगे जब तुम क्लियरली डिफाइन करोगे कि सक्सेस एक्चुअली कैसा दिखता है। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 5। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, कम्युनिकेशन आज तुम्हारा सुपर पावर है। वर्क हो या रिलेशनशिप्स हो, लीडरशिप और करियर फोकस में फ्रेश मोमेंटम मिल सकता है, सो स्टेप अप बॉस। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 16। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, इमोशंस थोड़े से इंटेंस हो सकते हैं एज द मून जॉइंस प्लूटो इन योर साइन। डीप फीलिंग्स या हिडन ट्रूथ सर्फेस हो सकते हैं। रिएक्ट करने से पहले ब्रीद और गूगल पे अपने एक्स को सर्च मत करना, कपीश। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 31। पाइसीज यानी कि मीन राशि, लॉजिक और इमोशंस के बीच थोड़ा सा टग ऑफ वॉर चल रहा है आजकल। अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करो और कंप्लीटली क्लोज मत करो। लव डिजर्व्स अ डोर, बस सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग रखो। लकी कलर इज सी फोम ग्रीन, लकी नंबर इज 8। एंड दैट इज योर राशि जोन पार्ट 2। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में, एंड फॉर मोर मिर्ची मैडनेस फॉलो मी, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: वेलकम बैक टू राशि जोन पार्ट टू। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: मिर्ची राशि जोन।
0: लिब्रा यानी तुला राशि, आज मूड हार्मोनियस और चेयरफुल रह सकता है। गुड न्यूज भी मिल सकती है आज के दिन, बस अपने प्राइवेट थॉट्स को पहले क्वाइटली सॉर्ट करो, फिर दुनिया को अपडेट देना। हर थॉट को इंस्टाग्राम स्टोरी बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। लकी कलर फॉर यू इज बेबी ब्लू, लकी नंबर इज 11। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स और दूसरों के ड्रामे से दूर रहो। ग्रुप प्लान्स में मोमेंटम वापस आएगा, स्पेशली जब तुम्हारा मैसेज क्रिस्टल क्लियर हो। ड्रामा नेटफ्लिक्स पर अच्छा लगता है, रियल लाइफ में नहीं। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 27। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और कॉन्वर्सेशन शेड्यूल करने का परफेक्ट टाइम है। प्रोफेशनल गोल्स तब इजियर होंगे जब तुम क्लियरली डिफाइन करोगे कि सक्सेस एक्चुअली कैसा दिखता है। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 5। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, कम्युनिकेशन आज तुम्हारा सुपर पावर है। वर्क हो या रिलेशनशिप्स हो, लीडरशिप और करियर फोकस में फ्रेश मोमेंटम मिल सकता है, सो स्टेप अप बॉस। लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक, लकी नंबर इज 16। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, इमोशंस थोड़े से इंटेंस हो सकते हैं एज द मून जॉइंस प्लूटो इन योर साइन। डीप फीलिंग्स या हिडन ट्रूथ सर्फेस हो सकते हैं, रिएक्ट करने से पहले ब्रीद और गूगल पे अपने एक्स को सर्च मत करना, कपीश। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 31। पाइसीज यानी कि मीन राशि, लॉजिक और इमोशंस के बीच थोड़ा सा टग ऑफ वॉर चल रहा है आजकल। अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करो और कंप्लीटली क्लोज मत करो, लव डिजर्व्स अ डोर, बस सिक्योरिटी सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग रखो। लकी कलर इज सी फोम ग्रीन, लकी नंबर इज 8। एंड दैट इज योर राशि जोन पार्ट टू। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में, एंड फॉर मोर मिर्ची मैडनेस फॉलो मी, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

that, Mirchi Mornings has come to an end. मेरा नाम है Priscilla and before I let you go back to your morning madness, एक story जो genuinely मुझे smile देकर गई है, वो बताती हूँ तुम्हें. China में World Humanoid Robot Games में ex humanoid का Tien Kung Omni नाम का robot 400 meter race जीत गया. लेकिन एक फनी पार्ट भी है इसमें, इसको शाय रोबोट बोला जा रहा है बिकॉज रेस के दौरान ये अपने आर्म्स ऊपर करके लिटरली फेस को कवर कर रहा था और मेकर्स के अकॉर्डिंग रोबोट ने खुद सीखा कि इस पोस्चर में रनिंग उसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है. मतलब कि हम ह्यूमंस आई नीड टू वर्क ऑन माय कॉन्फिडेंस तो बोलते हैं और रोबोट्स जो है वो हमें कॉपी करते करते थोड़ा कंफर्टेबल रनिंग के लिए कर रहे हैं. ऑनेस्टली टेक्नोलॉजी इज मूविंग सो फास्ट, कल को रोबोट हमसे बोलेगा सॉरी यार कैमरा ऑन नहीं कर सकता बिकॉज मुझे सोशल एंग्जाइटी है. और जाते जाते मेरी तरफ से एक और रिमाइंडर, मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए रक्षाबंधन सेलिब्रेट करो एंड विन करो गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ. रजिस्टर करो बहुत ही इजिली, व्हाट्सएप पर राखी टाइप करके भेजो एंड सेंड इट विद योर फुल नेम टू 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. या फिर तुम मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, जहां पर फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर. ऑनलाइन विजिट करने के लिए veeranijewelers.com इज द साइट एंड अभी के लिए आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी ऑन मिर्ची. Good mornings, my name is Priscilla. Stay tuned and stay hot.

0: कुछ ऐसा होता है ना कि आप कुछ पढ़ लेते हो और वो चीज जो है वो आपके दिमाग में जाकर एकदम सही जगह पर पिंच करती है। ऐसा ही कुछ मैंने कल पढ़ा, और जब मैंने पढ़ा ना तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। मैंने कहा यार ये तो मैं आपको सुना के रहूंगी।
1: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tuned in with me on Mirji. और मैंने ना चंद लाइन्स पढ़ी और मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो कितना रेजोनेट करता है यार लाइफ से। मैंने कहा कि यार आप बड़े शौकीन हो इन सारी चीजों के, तो आपको भी सुनाती हूँ ये चीज। तो बात कुछ ऐसी है कि एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी पर दिल तितलियों का दीवाना था, थक कर आना स्कूल से फिर भी खेलने जाना था, बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था, रोने की वजह ना थी ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। देखा, लगा ना, वाकई में लगा ना, मतलब हम अपनी लाइफ में अलग ही अडल्टिंग का जोन जो है वो लेकर बैठे हुए होते हैं, अपनी लाइफ चल रही होती है, कट रही होती है, फिर एकदम से आप कुछ पढ़ लेते हो, आप कुछ देख लेते हो और फिर आपको लगता है ओ नो, हाँ यार वो भी क्या जमाना था और बचपन हमें जरूर याद आना था। तो चलो फिर थोड़ा और याद करते हैं 90 के जमाने को, और मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को उसी तरफ घुमाती हुई 90s के गियर में डालती हुई आपसे कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मेरा ना समीर सोनी पर बहुत बड़ा क्रश था एंड आई न्यू ही इज अ मॉडल, क्योंकि मैंने ना उनकी एक झलक दूध दूध दूध दूध वो वाले एड में देखी थी, और मैं जब भी देखती थी ना देख देख कर उछल जाया करती थी। तो जब उनकी मूवी चाइना गेट आई, उसे मैं कैसे मिस कर सकती थी यार।
0: मिर्ची VCR।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड नहीं, मैं इतना डिसीजन मेकिंग में नहीं थी कि सबको उठा के थिएटर लेकर चली जाती कि नहीं नहीं मुझे चाइना के थिएटर में देखनी है। नहीं नहीं, इतनी हम लोगों की औकात नहीं हुआ करती थी एज किड्स। ये तो केबल पर जब मूवी आई तो मैंने उसको मिस नहीं किया। एंड वेल, ये समीर सोनी की डेब्यू फिल्म तो थी ही थी, लेकिन टेक्निकली समीर सोनी वॉज नॉट अ हीरो इन द फिल्म, ही वॉज एक्चुअली डूइंग अ सपोर्टिंग रोल, क्योंकि मेन लीड्स तो यार अमरीश पुरी, नसीरुद्दीन शाह, डैनी डोंगजप्पा, ओम पुरी, ये सब थे। और इस फिल्म में समीर सोनी के ऑपोजिट थी ममता कुलकर्णी। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाइना गेट का पोस्टर बना था ना, उस पर ममता कुलकर्णी कहीं नजर नहीं आई थी। और इसके पीछे रीजन ये है कि ममता कुलकर्णी और राजकुमार संतोषी के बीच में एक मेजर फॉल आउट हुआ था। हालांकि इस लड़ाई के बाद वो वापस मूवी करने के लिए आई तो सही, लेकिन उसके बाद राजकुमार संतोषी ने उन्हें अपनी फिल्म में ज्यादा प्रमोट नहीं किया, और जो पोस्टर बना चाइना गेट का उसमें बाकी सारे एक्टर्स के साथ उर्मिला मातोंडकर की पिक्चर लगाई गई, ना कि ममता कुलकर्णी की। हालांकि उर्मिला वॉज इन द फिल्म फॉर जस्ट वन सॉन्ग एंड दैट वॉज छम्मा छम्मा। लेकिन ऑनेस्टली पूरी फिल्म करने के बाद भी ममता को इतना नाम नहीं मिला जितना कि उर्मिला मातोंडकर को एक गाना करने के बाद मिला था। लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी कास्ट में एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपना रोल निभाने के लिए न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था। बताऊंगी आपको आगे थोड़ी देर में। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Sara zamana, sara ka deewana.
2: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
3: मेरे मन को भाया मैं कुत्ता काट के खाया. बोलो ये कौन सी मूवी का डायलॉग है?
2: मिर्ची चैट रूम.
3: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और सही जवाब है चाइना गेट. मतलब चाइना गेट में न जाने कितने सारे ऐसे डायलॉग्स थे जो कि आज तक मुझे याद है. एक तो ये डायलॉग, एंड देन देयर वाज दिस वन और डायलॉग जिसमें कि प्लेटफॉर्म का सीन होता है और एक जनाब दूसरे जनाब से पूछ रहे होते हैं कि भाई साहब आपके बजे में कितने घड़े हैं. अगला इंसान कहता है नौने पौं. I still use this dialogue in my life. अगर पौने नौ बज रहे होते हैं और कोई मुझसे पूछ ले कि कितने बज रहे हैं तो मैं नौने पौ ही बोलती हूँ, पौने नौ नहीं बोलती. लेकिन कमिंग बैक टू चाइना गेट, हाँ ये जो फिल्म बनी थी इसके अंदर जो जगीरा का रोल प्ले करने वाले मुकेश तिवारी थे, जिनकी की ये पहली ही फिल्म थी, उन्हें न जाने कितने सारे अवार्ड्स में नॉमिनेट किया गया था फॉर हिज विलेनियस रोल. हाँ और किया भी क्यों ना जाना चाहिए था, इतना सराहा गया था उनका ये कैरेक्टर बिकॉज उन्होंने काम ही ऐसा किया था. लेकिन लोगों को ये नहीं पता है कि अपने कैरेक्टर को बरकरार रखने के लिए, उसका लुक मेंटेन करने के लिए और जगीरा जैसा फील करते रहने के लिए मुकेश तिवारी ने न जाने कितने दिनों तक नहाया ही नहीं था. हाँ जी, वो बिल्कुल अपना परफ्यूम इस्तेमाल किया करते थे. एंड ही डिड नॉट टेक अ शावर जस्ट सो दैट ही लुक्स एज गंदा एज जगीरा. इसे कहते हैं मेथड एक्टिंग. सर्दियों में हम भी यही करते हैं. हाँ, वी ऑल्सो टेक अप अ कैरेक्टर एंड वी वॉन्ट टू लुक लाइक दैट कैरेक्टर. एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि बहुत सारे लोग शावर नहीं ले रहे होते हैं सर्दियों में. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आपको दूरदर्शन का गुमशुदा की तलाश सेगमेंट याद है?
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। DD1 पर रोज शाम को जब न्यूज आया करती थी तो उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था, गुमशुदा की तलाश। याद तो हो गई यार, जो आज हमारे लिए अपने दोस्तों के लिए एक ताना बन के रह गया है कि हम अब उनके लिए कहते हैं कि तुम आते नहीं हो इसलिए हमें गुमशुदा की तलाश है। लेकिन ये कभी एक सीरियस सेगमेंट हुआ करता था जहां गुमे हुए लोग जो है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही होती थी वाया द टेलीविजन। बट एक राज की बात बताऊं मैं आपको, जब इस सेगमेंट में गुमशुदा लोगों की पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई जाती थी ना, तो ऑनेस्टली अगर वो इंसान मेरे पास भी बैठा होता ना, तो मैं भी उसे नहीं पहचान पाती। वैसे तो आज भी किसी लड़की का फोटो देखकर उसे ढूंढना मुश्किल हो जाए, क्योंकि बिना मेकअप ऑफ कोर्स किसी का चेहरा समझ नहीं आता और बिना मेकअप कोई आजकल फोटो नहीं खिंचवाता। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, हम बच्चे ना इस सीरियस सेगमेंट को मजाक बना दिया करते थे। जब कोई फोटो स्क्रीन पर दिखती थी ना, तो हमारा बोलना शुरू हो जाता था एक दूसरे की टांग खींचते हुए और एक दूसरे को छेड़ते हुए कि अरे देख तेरी फोटो दिखा रहे हैं टीवी पर। और पता नहीं इसमें छेड़ने वाली बात क्या थी और छिड़ने वाली बात क्या थी कि छेड़ने वाला छेड़ता था और छिड़ने वाला भी बुरी तरीके से तुनक जाता था और छिड़ जाया करता था। बट जो भी था भाई, बात ये भी कितनी सही है ना कि आज किड्स हम सीरियस चीज में भी फन ढूंढ लेते थे। एंड आई होप कि आप आज भी इस प्रथा को फॉलो करते हो, बिकॉज लाइफ को हम सीरियसली नहीं ले सकते बाबू मुशाए। क्यों? क्योंकि लाइफ इटसेल्फ इज यूज्ड टू क्रैकिंग जोक्स ऑन अस। इसी बात पर ताल से ताल मिला। कमिंग अप दिस नेक्स्ट ट्रैक, यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ये वो गाना है जो आपको ऑफिस में वायरल कर सकता है. मोहित चौहान ने गाया इतनी मस्ती में ना इस गाने को, आई स्वेयर. यू नो व्हाई आपको वायरल कर सकता है, क्योंकि अगर इस गाने को आप ईयरफोन्स पे सुन रहे हो ना, तो आप आसपास की दुनिया जो है ना उसको तो भूल ही जाओगे, और फिर आसपास की दुनिया को भूलने के बाद जो आप अपने आप में खो जाओगे और नाचते हुए नजर आओगे और अजीब अजीब सी आप क्रियाएं करते हुए नजर आओगे ना, तो ऑफकोर्स वायरल होना तो बनता है ना बॉस. ये गाना ही वही है जो आपको दुनिया भुला देता है, आपकी करंट प्रॉब्लम्स जो है वो भुला देता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ जिंदगी की ताल पर नहीं, इस गाने की ताल पर नचा देता है.
1: सारा जमाना सारा का दीवाना.
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. और हम जो म्यूजिक के इतने दीवाने हैं मेरे यारा, वही तो आ जाते हैं रोज रोज ये कहने के लिए कि मान ना मान करो गानों की पहचान. अब सिंस मुझे पता ही है कि आप म्यूजिक के इतने फैन हो और म्यूजिक आपके लिए थेरेपी है, तो यहीं पर मैं एक दाव खेल जाती हूँ और रोज आपके लिए एक सवाल गाने की सूरत में चलाती हूँ और दो गानों की धुनों को मिक्स करके आती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि बताओ यार ये दोनों गाने कौन से हैं. तो आज की जो दो धुनों का मिक्स है वो है कुछ यूं. गिव इट अ लिसन.

बस जी, अब आपको डीएम करना ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता देना है कि ये दो कौन से गाने हैं जो अभी आपने सुने। मिर्ची सारा इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, याद रखिएगा। एंड स्टे ट्यून्ड रहिए विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: आई एम नॉट टू श्योर आपने अर्जुन रामपाल और मनीषा कोइराला की मोक्ष देखी है कि नहीं, क्योंकि ये फिल्म कब आई कब गई पता ही नहीं लगा, लेकिन मैंने जरूर देखी है क्योंकि यार केबल पे जो फिल्म आती थी ना रात के 12 बजे के बाद वो मैं डेफिनेटली देखा करती थी।
2: मिर्ची टग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, ये फिल्म नहीं लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जिसकी पूरी की पूरी धुन यानी कि जो म्यूजिक है इस पूरे गाने का वो कट कॉपी पेस्ट है, थैंक्स टू मिस्टर राजेश रोशन जिनका म्यूजिक इस गाने में दिया गया है। द गाना इज दिस वन।

0: जो सनसनाए क्यों जिस्म थर थर आए कोई बताए मुझको।
1: और इसे उठाया गया है फ्रॉम एन आर्टिस्ट जिनका नाम है वैंगेलिस, और इन्होंने ये म्यूजिकल कॉम्पोजिशन बना के बस छोड़ दिया था शायद इसी दिन के लिए कि एक दिन राजेश रोशन आए, यही म्यूजिक ऐसा का ऐसा उठाएं और इसको अपने गाने के बेड पे लगाएं और गाना चलाते जाएं।

फिलहाल के लिए डेफिनेटली नॉट दिस ट्रैक, लेकिन कमिंग अप अनदर वन आपके लिए, झूम जाओगे। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम आपके कौन एक ऐसी फिल्म है जिसको मैंने 175 बार देख लिया होगा और आज भी देयर इज अ डे जब मूड बनता है और हम एक दूसरे को कहते हैं हम आपके कौन देखे क्या
2: ये है 90 की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा। देखो यार जज करना है तो जज कर लो, मैं तो भाई हूँ सूरज भरजातिया फैन, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। और हम आपके कौन को इतनी बार देखने के बाद वर्ड टू वर्ड, डायलॉग टू डायलॉग और सीन टू सीन मुझे चीजें याद है। नाउ देयर इज अ सीन जब घर में खुशखबरी आती है, यानी कि बच्चे की किलकारी जो है वो सुनाई देती है। सब हॉस्पिटल में जो थिएटर होता है ऑपरेशन थिएटर, उसके बाहर वेट कर रहे होते हैं कि कब बच्चे की किलकारी आए, और धिकताना गाना वहीं से शुरू होता है राइट। एंड जब डॉक्टर चाची जो है वो बाहर आती हैं और ये खबर सुनाती है कि लड़का हुआ है, एट दैट टाइम सलमान खान एकदम एक्साइटेड होकर हिमानी शिवपुरी को अपनी गोद में नहीं उठा लेते हैं। दैट इज डॉक्टर चाची इन द मूवी हम आपके हैं कौन। उस वक्त दैट सीन वॉज एक्चुअली नॉट प्लान्ड, वो सलमान खान ने एकदम से कर दिया था। एंड हिमानी शिवपुरी का इस पर रिएक्शन ये था कि उन्होंने हल्के से ना सलमान खान को एक चाटा मार दिया था, बिकॉज वो चौंक गई एकदम से कि ये क्या हुआ। And she in an interview told कि you know सलमान खान was a prankster and you know ऐसी हरकतें वो कुछ ना कुछ करते ही रहते थे और ये भी एक वैसी ही सी हरकत थी। अब ये सारी चीजें जो है उस सीन में कैमरे पे कैप्चर हुई, तो सूरज भरजातिया ने भी डिसाइड किया कि इस सीन को रखते हैं, हम इसमें टेक नहीं लेते हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये अच्छा लग रहा है। एंड एक्चुअली ये कितना अच्छा लग रहा है, आई एक्चुअली लव दिस सीन जब वो डॉक्टर चाची को गोद में उठा के बच्चे की तरह खिला रहे होते हैं। आज के जमाने में है कोई माइका लाल जो ऐसा कर सकता है? ना मुन्ना ना, बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Dear, आजकल के जमाने के नेम लेबल और हमारे टाइम में स्टिकर कहलाने वाले
2: यादों को चिट्ठी।
1: आज स्टेशनरी देखती हूँ ना तो चौंक जाती हूँ। आजकल तुम्हें पता है जो तुम्हारी आज की पीढ़ी है उन पर तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उन पर नाम टाइप ही आते हैं मेड टू ऑर्डर। लेकिन बैक इन आवर स्कूल टाइम्स, स्कूल खुलने से पहले इट यूज्ड टू बी अ टास्क कि हम मम्मा के साथ बैठकर अपनी बुक्स और कॉपीज पर कवर चढ़ाया करते थे, फिर उसके बाद तुम्हें चेरी ऑन द टॉप की तरह बुक्स पर लगाया करते थे और फिर लास्ट लेग होता था सब किताबों पर हमारा नाम, क्लास और सेक्शंस लिखे जाना। और तुम होते भी तो कितनी वैरायटी के थे यार, कहीं फ्लावर्स वाले तो कहीं कार्टून्स वाले। और बीटी तो तब होती जब स्कूल अपनी तरफ से बोरिंग वाले लेबल्स खरीदने को कंपल्सरी कर चुके थे, तब लगता था कि कितना काम है यार। लेकिन आज जो काम करते हैं उनके बीच लगता है कि यार वो भी क्या मस्त काम हुआ करता था जिसे हम कितनी सीरियसली लिया करते थे। एक दिन अपने फन के लिए आई डिसाइडेड कि आज मैं अपने नेफ्यू की किताबों पर कवर्स चढ़ाऊंगी और स्टिकर्स लगाऊंगी और उनपे उसका नाम, क्लास, सेक्शन ये सब लिखूंगी। मैं बड़ी एक्साइटेड थी इस काम को लेकर। फिर पता लगा कि मेरी भाभी ने तो किसी को पैसे देकर ये काम करवा लिया है और लेबल पर नाम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एवरीथिंग इज प्रिंटेड। सुन रहे हो, तुम्हारी आज की जनरेशन भी ना काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन मुझे फिर भी तुम पसंद हो। तुम्हें आज भी अपने ख्यालों में पढ़ती तुम्हारी सारा। एंड नाउ कमिंग अप अ ट्रैक जो आज तो प्यार मोहब्बत की याद दिलाता है, लेकिन ये डायलॉग हमने क्लास मॉनिटर्स से बहुत सुना है जब हम बातें खूब किया करते थे क्लास में। तो क्लास मॉनिटर्स यही कहा करते थे कि कुछ ना कहो। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: Oof, ये सवाल हम अक्सर प्यार से करते ही करते हैं. कौन सा सवाल? भाई कैसेट की साइड ए का दूसरा गाना.
2: मिर्ची 90s कैसेट.
1: सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में दिस नशीला गाना. बट डू यू नो, इस गाने की म्यूजिक की इंस्पिरेशन एग्जॉर्सिस्ट 2 मूवी की रीगन थीम से ली गई है. बट इजंट इट कूल कि पल में डराने वाली म्यूजिक को बड़ी खूबसूरती से प्यार में गिराने वाली म्यूजिक बना दिया. और ये काम करने वाले इंसान थे द म्यूजिक कंपोजर ऑफ दिस ट्रैक संदीप चौटा. और इस गाने में ना मुझे ये लाइन बहुत ऐप लगी कि पहली दफा उसे देख कर होने लगा कुछ ऐसा असर. खुद से हुई मैं बेखबर, मैं हूँ यहाँ, दिल मेरा है वहाँ. अरे अरे अरे अरे, आप कहाँ चल दिए? अभी तो ये गाना आपको पूरा सुनना है यार, तब इस गाने में गहराई से खो जाइएगा. पर पहले मेरा खुदा हाफिज कबूल तो करिए. तो इसी के साथ मैं आपसे कहती हूँ हम है राही प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते. बाकी यहाँ के अलावा मैं आपको मिली जाती हूँ ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा. अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलेंगे सेम प्लेस सेम टाइम बट नॉट द सेम डे. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Avicii, It's Hot.
1: थोड़ा ठहर जा, अभी रास्ते

पुरानी जीन्स पर। हाय, मैं हूँ श्रेया, और क्योंकि मैं एक आरजे हूँ ना, तो मुझे लोगों से बात करने में बहुत मजा आता है। मतलब लोग मुझसे एक्चुअली में आकर के कहते हैं कि बस कर श्रेया, बहुत ज्यादा बातें नहीं। अच्छा, जब आप किसी एक करियर को लेकर के बहुत ही पैशनेट होते हो ना, तो जनरली आप उसी करियर के लिए ट्राई करते हो। लेकिन हमारे एक बॉलीवुड स्टार ऐसे थे जिनके करियर की शुरुआत ऑडिशन से तो हुई, लेकिन कैमरे के आगे नहीं बल्कि माइक के आगे। ये जो लेजेंडरी स्टार थे ना, इनका ड्रीम था कैमरे के आगे आना, लेकिन उससे पहले ये माइक के आगे आए। किसकी बात कर रही हूँ मैं, अभी बताऊंगी कुछ गानों के उस पार। कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

0: अरे देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

बाकी बॉलीवुड स्टार्स ने जब अपने करियर की शुरुआत की तो कैमरे के आगे टेक 1 2 3 ये करके ऑडिशन दिया, लेकिन जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो माइक टेस्ट, हेलो चेक 1 2 ऐसे शुरुआत करी। पुरानी जीन्स पे हाय, दिस इज मी श्रेया। सुनील दत्त साहब की बात कर रही हूँ मैं, जिनका करियर का पहला जॉब जो था ना वो एज एन आरजे था। ही वॉज अ रेडियो जॉकी विद रेडियो सिलोन, और वहां पे काम करते करते ना सुनील दत्त साहब ने एक सपना देखा। ये सपना था एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को इंटरव्यू करने का। वो कौन सी एक्ट्रेस थी और क्या उनका ये ड्रीम पूरा हुआ, भाई मैं सारी चीजें एक बार में तो बताती नहीं हूँ, क्योंकि अगर बता दी तो तुम कहीं और ना चले जाओ, तो इसलिए तुमको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में बहुत मजा आता है मुझे। वापस अब पूरी कहानी बताती हूँ सुनील दत्त साहब की, ओनली ऑन पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अच्छा, कहते हैं ना कि जब तुम कोई चीज पूरे दिल से चाहो तो कायनात साजिश करती है तुम्हें उस चीज से मिलवाने की। पुरानी जीन्स पर हाय, दिस इज मी श्रेया, और मैं बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले सुनील दत्त साहब की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मेरे जैसे करी, यानी आरजे बन करके। ही वॉज एन आरजे विद रेडियो सिलोन, जो उस टाइम का इंडिया का बहुत ही फेमस रेडियो चैनल था। यहाँ पे वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू किया करते थे, चैट शोज हुआ करते थे। ऐसे में सुनील दत्त साहब ने एक सपना देखा कि काश कभी वो नरगिस जी को इंटरव्यू करें अपने खास शो पे। एंड कैन यू बिलीव कि ये सपना पूरा भी हुआ। नरगिस जी उनके रेडियो स्टेशन पहुंची, लेकिन सुनील दत्त साहब उनका इंटरव्यू नहीं ले पाए। इनफैक्ट उनसे एक शब्द भी नहीं पूछ पाए। क्यों? क्योंकि ही वॉज सो स्ट्रक विद हर ब्यूटी, वो उनकी खूबसूरती को बस देखते और निहारते रह गए, और नरगिस जी मुस्कुरा के वहां से चली गई। किसे पता था कि आने वाले सालों में नरगिस जी उन्हीं की वाइफ बनेंगी। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें, उस जमाने के गानों के साथ विद मी श्रेया, और भी करेंगे ना, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा मुझे ये बताओ कि 13 साल में, 13 years में आप कौन सी क्लास में होते हो? आई थिंक 6th या 7th। और जब आप 23 साल के होते हो तो क्या पढ़ाई कर रहे होते हो? शायद कॉलेज में, है ना? पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। सोचो कोई एक्ट्रेस इतनी कमाल कि उन्होंने 13 साल की उम्र में एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जो कि 23 साल के लड़के की माँ का रोल था। ये एक साउथ इंडियन फिल्म थी, हीरो साउथ इंडिया के मेगा स्टार, और ये हीरोइन पूरे इंडिया की जान। कौन सी हीरोइन थी ये? आहा, इतनी आसानी से नहीं। गाने सुन करके वापस आओ, फिर बताती हूँ। यू आर लिसनिंग टू श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कहते हैं कि एक्टिंग एज नहीं स्किल देखता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। 13 साल की लड़की ने 23 साल के लड़के की माँ का रोल प्ले किया था, और ये बात ना कई सालों तक लोगों को नहीं पता चली जब तक श्रीदेवी जी ने खुद ये लोगों को नहीं बताया। एक साउथ इंडियन फिल्म आई थी जिसका नाम था मुंद्रू मुदीचू। इसमें श्रीदेवी, जो कि तब सिर्फ 13 इयर्स की थी, उन्होंने रजनीकांत जी की मम्मी का रोल प्ले किया, जो कि उस टाइम पे 23 ईयर ओल्ड थे। और लोगों को ये बात पता भी नहीं चली जब तक खुद ये बात द हवा हवाई गर्ल ने नहीं बताई। एक अच्छे एक्टर के लिए ना एज लिमिट नहीं होती है फॉर द कैरेक्टर्स दे प्ले। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची के साथ।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ।

रहा। उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद इस जमाने की श्रेया। तो रेखा जी को हम सब बेहतरीन एक्ट्रेस की तरह जानते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि रेखा जी ने अपनी फेलो एक्ट्रेसेस को हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उनकी आवाज तक बनी है। जैसे जब मूवी आखिरी रास्ता शूट हुई, श्रीदेवी नई नई थी हिंदी इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन जी के साथ ये फिल्म थी, उनके हिंदी के शब्द इतने क्लियर नहीं थे और तब तक वो बहुत सारी साउथ की फिल्में कर चुकी थी। ऐसे में सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करने पे रेखा जी ने आखिरी रास्ता में श्रीदेवी को अपनी आवाज दी, यानी उनके लिए डबिंग की। याराना फिल्म के लिए नीतू सिंह के लिए अपनी आवाज दी। नीतू सिंह की तब तक शादी हो चुकी थी कपूर खानदान में और मूवी की पूरी शूटिंग खत्म, लेकिन डबिंग रह गई थी। प्रोडक्शन हाउस को भारी नुकसान हो रहा था बिकॉज मूवी कंप्लीट ही नहीं हो पा रही थी। फिर क्या, रेखा जी ने नीतू सिंह की आवाज बन करके इस फिल्म में भी डबिंग की है। एंड देन शी स्टेप्ड इन फॉर स्मिता पाटिल जी। स्मिता पाटिल जी की मूवी थी वारिस, जिसकी शूटिंग के बाद वो इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे में मूवी शूट हो चुकी थी लेकिन उनकी आवाज नहीं थी। रेखा जी यहाँ पर भी आई और स्मिता पाटिल की इस फिल्म को पूरा किया उनकी आवाज बन करके। पुरानी

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, हमारी जो उस जमाने की फिल्में होती थी ना, उसमें विलेन्स बहुत पॉपुलर हो जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि विलेन हीरो से ज्यादा फेमस हो जाते थे। अब चाहे वो मिस्टर इंडिया के मोकैम्बो हो, हु बिकेम मोर पॉपुलर देन मिस्टर इंडिया हिमसेल्फ यानी अनिल कपूर, या फिर शोले के गब्बर हो जो कि जय वीरू से ज्यादा लोगों में छा गए थे। तो पहली बार ऐसा हुआ जब ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स की लाइन लग गई थी विलेन के घर पे, यानी अमजद खान जी के घर पे, और उन्होंने एक बिस्किट का ऐड किया जिसकी टैगलाइन पता है क्या थी? अगर ये बिस्किट खाओगे तो गब्बर जैसे सॉलिड बनोगे। इंटरेस्टिंग है ना, ना जय की तरह ना वीरू की तरह, लेकिन गब्बर जैसे सॉलिड बनोगे। ऐसी ढेर सारे किस्से कहानियां हैं उस जमाने के, तुम्हारे साथ शेयर करती जाऊंगी। कहीं भी मत जाना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हफ्तों तक लोग लाइन लगा के खड़े होते थे कि शायद इस फिल्म की टिकट सुने मिल जाए। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। लोगों के घर के लोगों की बारियां लगी हुई थी कि आज ये बंदा जाकर के घर से खाना पानी लाएगा और दूसरा बंदा लाइन में खड़ा होगा। ये हाल हुआ था जब मुगले आजम रिलीज हुई थी। कहते हैं मुंबई के मराठा मंदिर के आगे तो लोगों में हाथापाई हो गई थी, कर्फ्यू लगने तक की नौबत आ गई थी। पीपल यूज टू स्टैंड इन क्यूज फॉर वीक्स टू गेट द टिकट्स। ऐसी पॉपुलैरिटी किसी फिल्म की इंडिया ने पहले कभी नहीं विटनेस की थी। मुगले आजम की बात कर रही हूँ मैं। इसके टिकट्स भी ना बहुत ही खास तरीके से बिके थे। इसके टिकट्स में एक पूरा डॉकेट होता था, एक फोल्डर रखा गया था, तो अगर आप टिकट खरीदते थे आपको एक फोल्डर भी दिया जाता था। उस फोल्डर में दिलीप साहब और मधुबाला जी की फोटोग्राफ्स थी। नॉट जस्ट दैट, पूरी फिल्म को शूट करते समय जो जो खट्टी मीठी इंसिडेंट्स हुए थे ना वो भी लिखे गए थे। आज जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो जाए, ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी उसी जमाने में बना करती थी। लेकिन इस फिल्म ने मधुबाला जी को बहुत सारे घाव दिए थे जिसकी वजह से वो बिस्तर से कई हफ्तों तक नहीं उठ पाई थी। शी वाज बेड रिडन। क्यों हुए थे घाव अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद मिर्ची श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। अब अगर उस जमाने की फिल्म की बात हो रही है तो मुगले आजम की बात नहीं करूं, ये तो गुनाह हो जाएगा मुझसे। आई एम श्योर आपने ये फिल्म देखी होगी, तो वो सीन याद है जिसमें मधुबाला जो है उनको जंजीरों से जकड़ा जाता है। के आसिफ साहब, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, वो हर चीज ऑथेंटिक चाहते थे, हर चीज रियल चाहते थे, तो इसीलिए मधुबाला जी के चेहरे पे वो पेन आए, उन्होंने एक्चुअल जंजीर यानी वो लोहे वाली चेन्स को उन्हें पहनाया था, जिसकी वजह से उनके इतने घाव हुए कि इस सीन को शूट करने के बाद वो कई महीनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। अब ये तो शरीर के घाव थे जो सबको दिख रहे थे, लेकिन दिलीप साहब के होने की वजह से जो दिल के घाव थे उन्हें बहुत कम लोग देख पा रहे थे। इसके बारे में भी बताऊंगी, बस कुछ गानों के उस पार। कम राइट बैक, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सस्ते देना। डन
3: कैन
2: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
4: ना, ना।

0: है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अच्छा आप ये सोच सकते हो कि एक टाइम ऐसा था जब बच्चन जी के साथ कोई हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। हाय, मेरा नाम है श्रेया और आप मुझे सुन रहे हैं पुरानी जीन्स पर। ये हुआ था जब बच्चन साहब की इनिशियल सारी फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी। जंजीर से पहले उन्होंने जितनी की थी ना, सब बॉक्स ऑफिस पे एकदम औंधे मुंह गिरती थी। सो इसी टाइम पे एक फिल्म आई बहुत ही प्यारी जो मुझे बहुत पसंद है, बॉम्बे टू गोवा। अब इस फिल्म के लिए महमूद साहब जो कि ये फिल्म बना रहे थे, उन्हें बच्चन साहब के ऑपोजिट एक हीरोइन चाहिए थी। जितनी भी हीरोइंस को उन्होंने अप्रोच किया, सबने साफ मना कर दिया, हम इस फ्लॉप एक्टर के साथ काम नहीं करेंगे। एक तो उसकी हाइट भी इतनी लंबी है कि हीरोइंस उनके साथ अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे में सिर्फ एक हीरोइन थी जिन्होंने हामी भरी, एंड दैट वॉज अरुणा ईरानी। अरुणा ईरानी ने इस फिल्म में उनके साथ काम किया। अब यहाँ पे अमिताभ जी ने एक वादा किया, वो वादा कब कैसे कहाँ पूरा हुआ बताऊंगी पूरी कहानी। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

तो अरुणा ईरानी ने अमिताभ बच्चन जी के साथ तब काम किया जब कोई और हीरोइन नहीं करना चाहती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और बॉम्बे टू गोवा ये फिल्म बना रहे थे महमूद साहब। इसमें अमिताभ बच्चन को लिया गया। बच्चन साहब की जितनी भी फिल्म्स इससे पहले आई थी सब फ्लॉप हो रही थी। जंजीर से पहले विच एवर फिल्म ही वॉज डूइंग सब के सब बॉक्स ऑफिस पे फेल हो रही थी। ऐसे में उनके साथ कोई भी हीरोइन नहीं काम करना चाहती थी। एक हीरोइन जिन्होंने हामी भरी वॉज अरुणा ईरानी। अमिताभ बच्चन जी ने अरुणा ईरानी की इस बात को एकदम दिल में बैठा लिया। आपको पता है एक वादा हुआ ऑन द सेट, जब मुस्कुरा के अमिताभ बच्चन जी ने ये कहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा, तो अरुणा ईरानी ने बच्चन साहब से मुस्कुरा के कहा कि जब भी तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे ना तो मुझे अपनी किसी फिल्म में पॉजिटिव रोल देना, क्योंकि अरुणा ईरानी वॉज नोन टू प्ले नेगेटिव कैरेक्टर। ये वादा बच्चन साहब ने निभाया भी। अभिमान में डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से बात करके अरुणा ईरानी को एक छोटा सा ही सही लेकिन पॉजिटिव रोल दिलवा के। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें और गाने श्रेया के साथ चलती रहेंगी, सो डोंट गो एनीवेयर, वापस आओ, आगे बढ़ाते हैं बातें।

पुरानी जीन्स पे या आपको श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, सो लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट उन सारे हार्टलेस दिलबरों के लिए है जो अपने प्यार करने वाले को ना बहुत तड़पाते हैं। मतलब उनको समझ में आता है कि वो उनके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उन्हें मजा आता है उनको छेड़ने में, उनको तरसाने में, उनको थोड़ा तड़पाने में। ये गाना आज उन्हीं के लिए। श्रेया जाती है, कल मिलने फिर से आती है। इन केस यू मिस मी, यू नो वेयर टू कैच मी, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल। फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, डीएम कर देना। बाय बाय।

0: कुछ शो सिर्फ देखे नहीं जाते।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: ना चाहते हुए भी आप उनके डायलॉग्स याद रख जाते हैं, उनके कैरेक्टर्स घर के नाम बन जाते हैं और उनका स्वैग पॉप कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। वेल, मिर्जापुर इज वन सच सीरीज फॉर यू और अब वही भौकाल ओटीटी से निकलकर बड़े पर्दे पर आने वाला है, मिर्जापुर द मूवी के फॉर्म में। एंड टॉकिंग अबाउट द सीरीज, ये एक ऐसा यूनिवर्स था जहां दोस्ती से ज्यादा पावरफुल थी दुश्मनी और प्यार से ज्यादा डेंजरस था पावर का ऑब्सेशन। कालीन भैया का काम एंड कैलकुलेटेड स्वैग, गुड्डू पंडित का रिवेंज मोड और मुन्ना भैया की अनप्रेडिक्टेबल मैडनेस सबने मिलकर मिर्जापुर को कल्ट बना दिया। और अब जब 3 सीजन्स के बाद इस सीरीज का मूवी वर्जन आ रहा है तो भाई हर दूसरे फैन के अंदर एक्साइटमेंट का लेवल सुपर से भी ऊपर है। और अगर आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े एंड आपसे बोले कि भाई ये लड़की मिर्जापुर की बातें क्यों कर रही है इतनी सारी, देन बाबू मोशाए आज मेरे शो पे होने वाले हैं मिर्ची गिरफ्तार, नन अदर देन द स्टार कास्ट ऑफ मिर्जापुर द मूवी। वेल, उसके अलावा भी बहुत कुछ फिल्मी होने वाला है राइट हियर ऑन मिर्ची, क्योंकि आपको पता है मैं हूँ आपके साथ आपकी लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति। So stay tuned, it's hot.

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हो आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी क्लैरिफाई, मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। सो बेसिकली हर रोज की भांति आज भी मैं आपके अंदर के फिल्मची को जगाने की कोशिश कर रही हूँ। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, एंड देन मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। आज सबसे पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कौन है?
3: हाय श्रुति, मैं आरुल बात कर रहा हूँ।
0: हाय आरुल, कैसे हो आप?
3: बढ़िया हूँ, आप बताओ?
0: बिल्कुल बढ़िया,
3: मैं गेम खेलने के लिए तैयार हूँ।
0: क्या बात, पूछने के पहले ही। चलिए फिर आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाते हैं। मेरा पहला सवाल है, रीसेंट हिंदी फिल्म वो कौन सी है जिसमें धर्मेंद्र पाजी और शबाना आजमी के बीच चुंबन है?
3: रॉकी रानी की प्रेम कहानी।
0: बहुत ध्यान से देखे हैं आप। एनीवे, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रॉकी की दादी कौन है?
3: जया बच्चन।
0: जया बच्चन की फिल्म जिसमें उनका एक भी डायलॉग नहीं है, वो बस लालटेन जलाती दिखती हैं सफेद साड़ी में।
3: सफेद साड़ी में लालटेन जलाती दिखती हैं।
0: हाँ जी,
3: शोले।
0: क्या बात है, शोले में धन्नो किसकी घोड़ी है?
3: हेमा मालिनी।
0: हेमा मालिनी अपने बच्चों के घर बारी बारी से किस फिल्म में जाती है?
3: बागबान।
0: क्या बात है, बागबान में टाइपराइटर कौन चलाता है?
3: बच्चन साहब।
0: अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा किस फिल्म में बने हैं?
3: कल्की।
0: कल्की में कल्की की मम्मी कौन है?
3: दीपिका।
0: दीपिका पाडुकोन की फिल्म जिसमें वो अपने रियल लाइफ हस्बैंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती हैं।
3: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर।
0: अटक गए तो अटक गए हैं आरुल, अटक गए हैं। कोई बात नहीं यार, बट यहाँ तक इतना मस्त जो गेम खेला है उसके लिए आपको ये टैग तो जरूर बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो बस इसके आगे का गेम अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और आओ साथ मिलके ढूंढते हैं आपके अंदर के फिल्मची को। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स ऑन।

0: itchy. It's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: It's hot. Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

Mirchi. It's hot.

0: रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशंस बर्बाद कर दी है हमारी इंडस्ट्री ने।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हेलो जी, हाय बाबू मोशाय, मैं हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, क्योंकि टाइम एंड अगेन हमें बहुत सारी फिल्में ऐसी मिली हैं जिन्होंने प्यार इश्क मोहब्बत को बड़ा ही अनरियलिस्टिक सा अप्रोच दे दिया है। और उस चीज को प्रूव करने के लिए आज मैं पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ फिल्मों के कंपेरिजन लेकर आई हूँ। लिस्ट में सबसे पहले वील कंपेयर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वर्सेज बैंड बाजा बारात। नंबर दो पे हम बात करेंगे दिल धड़कने दो वर्सेज जाने तू या जाने ना। नंबर तीन पे कबीर खान वर्सेस बर्फी। नंबर चार पे ए दिल है मुश्किल वर्सेस तमाशा। एंड नंबर पांच पे साथिया वर्सेस वेक अप सेड। तो चलिए लिस्ट की शुरुआत करते हैं विद डीडीएलजे वर्सेस बैंड बाजा बारात, जहां एक तरफ डीडीएलजे में मंथ लॉन्ग पेड इंटरनेशनल ट्रिप्स दिखाई गई हैं विदाउट एनी कॉन्वर्सेशन अबाउट जॉब्स या बजट या क्रेडिट कार्ड बिल्स। वहीं दूसरी तरफ बैंड बाजा बारात की अगर बात करें तो यहां काफी रियलिस्टिक अप्रोच है। बिट्टू और श्रुति का जो रिलेशनशिप है वो उनके बिजनेस पार्टनरशिप के जरिए शुरू होता है, एंड एवरी सिंगल रुपी एंड प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही वोकली डिस्कस किए गए हैं इन द मूवी। तो अब आपको समझ में आया मैं किस अनरियलिस्टिक अप्रोच की बात कर रही थी। एनीवे, अपनी इस लिस्ट को एक बार फिर से वापस लेकर आऊंगी आपसे कुछ ही देर में। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: रियलिटी कम फैंटेसी ज्यादा लगती है ये।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: बाबू मोशाय, मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आने वाली मूवीज की बात कर रही हूँ, जो जनरली फैंटेसी का अप्रोच लेकर ही आती है, भले ही वो मेरे और आपके जैसे लोगों की कहानी दिखा रही हूँ, क्योंकि उसमें प्यार इश्क मोहब्बत को लेकर काफी अनरियलिस्टिक अप्रोच नजर आता है। ग्रैंड जेस्चर्स दिखाए जाते हैं, जबकि रियल कमिटमेंट की बातें नहीं होती, और ऐसे क्रूशियल डिटेल्स को अक्सर हमारी ये फिल्में इग्नोर कर जाती हैं। इसलिए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ कंपैरिजन ऑफ फिल्में कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले DDLJ वर्सेस बैंड बाजा बारात की बात हुई। अब नंबर दो पे दिल धड़कने दो वर्सेस जाने तू या जाने ना की बात करना चाहूंगी। दिल धड़कने दो में कबीर जैसे ही फारा को देखता है, रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा को देखते हैं स्विमिंग पूल के पास, तो एक अलग सा कनेक्शन दिखा दिया जाता है, और इमीडिएटली उनकी जो किस्मत है वो दोनों के बीच में एक ड्रामेटिक फ्लो ऑफ रोमांस लेकर आती है, और स्लो मोशन के जरिए सारी चीजें एकदम मस्त सी हो जाती है ना। वहीं दूसरी तरफ जाने तू या जाने ना, चाइल्डहुड फ्रेंड्स की कहानी, और उनका जो ये कोर्टशिप है, जो रिलेशन है, इट इज कॉन्स्टेंट। हाँ, वो कभी बोरिंग हो जाती है, कभी लड़ाई होती है इनके बीच में, बट दैट्स व्हाट अ रियल टाइम रिलेशनशिप लुक्स लाइक, राइट। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं, और नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट कबीर सिंह वर्सेस बर्फी। सो कबीर सिंह में जिस तरीके से इमोशनल सपोर्ट और प्यार को अग्रेसिव रूप दे दिया गया है, कंट्रोलिंग एंड ऑब्सेसिव रूप दे दिया गया है, दैट वाज रियली वहीं दूसरी तरफ असली पैशन तो बर्फी में दिखाया गया है, वो भी सिंपल कॉन्स्टेंट एक्ट्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के साथ। मतलब बताओ, कोई आपके लिए खाना लेकर आए, आपकी डेली की छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बिना बोले सॉल्व करता जाए। वेल, मेरी इस लिस्ट में अभी और कुछ ऐसी ही फिल्मों की चर्चा बाकी है, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: के खराब तू झरना कहीं तेरी दुकान पे पंगा ना लूं मेरे साथ काफी हो गई बक बक
1: बाकी बातें पीने बाद
0: शुभ हुए बादशाह।

गाओ हरे लाऊ चपाओ यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो अरे धूम धूम थिरके जा।